0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: गंगापुर सिटी की धरती।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। दोस्तों सुबह सुबह का गंगापुर सिटी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस यानी 36 सेल्सियस के आसपास तापमान है, और धूप में ना निकलें दोस्तों 10 बजे बाद या 11 बजे बाद, और शाम को 4 बजे के बाद ही घर से निकलने की कोशिश करें। दोस्तों आज की सुबह को बनाते हैं एनर्जेटिक, और लेकर चलता हूँ मैं आपका मन पसंद और फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश में, और सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की आवाज के साथ।

दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधोपुर से मोनिका मीना जी की तरफ से। सुनते हैं मोनिका मीना जी की फरमाइश का ये पहला और बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नाम राहुल मीना।
1: राहुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से बात कर रहे हैं।
1: बताओ सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तेरी गली से घर छोड़ के
1: सर आपका।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: मेरी मोटर सूट पहन के नाई बैठी है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown, Road Gangapur City, Near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13111.

0: जी नाम बताएं।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग।
1: निशा शर्मा गंगापुर सिटी से।
0: बताएं निशा जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जुबिन नौटियाल का है, कोई कहे कैलाश में तो, कोई कहे काशी में तो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं निशा जी आपको, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना।
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं।

0: प्रिंस मीना।
1: प्रिंस जी कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? गंगा पर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: गाना सुनना इश्क बावला।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपका आपकी फरमाइश करेगा।
2: कोक स्टूडियो भारत सीजन 3 सब्सक्राइब नाउ।

बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और

0: शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस, ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
0: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
4: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
3: रूपचंद जी, आपको, आपके परिवारजन और समस्त श्रोताओं को नमस्कार। बताएं सर, कहां से बात कर रहे हैं आप?
4: जिला बाड़मेर राजस्थान।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: पिक्चर का नाम है बंजारन, गीत के बोल है कब आएगा मेरे बंजारे।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको ये बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
2: राधे राधे सर।
1: राधे राधे, नाम बताएं सर आपका।
2: आसाराम गागा सर।
1: आसाराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला से।
1: आसाराम जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
2: तेरी बातों में वो जादू है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आसाराम जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना, रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
3: सारे गामा कारवां।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आए ठहरे और रवाना हो गए। जिंदगी क्या है, सफर की बात है। हैदर अली जाफरी के इस शेर के साथ मैं तनीषा 89.6 डीएस एफएम पर आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में आपका स्वागत करती हूँ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज की हमारी फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। सन 1998 में रिलीज हुए इस फिल्म को सलमान की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में सलमान खान ने मासूम, गुड लुकिंग और आकर्षक दिखने वाला एक युवा सूरज का किरदार निभाया है। सूरज को प्यार का असली मतलब तब समझ में आता है जब वो कोमल नाम की लड़की को अपना दिल दे बैठता है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। सफरनामे में आज की आखिरी फिल्म है अंदाज अपना अपना। ये एक बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई। फिल्म में आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन जैसे मुख्य कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने निर्देशित किया था। ये एक हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म के दौरान आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। जब भी आप देखोगे, पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आमिर खान, सलमान खान शानदार है और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी शानदार है। और परेश रावल का क्या कहना, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस फिल्म का संगीत आपको पुराने दिनों की याद जरूर दिलाएगा। आज के लिए इतना ही। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। शोला शोला।

0: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजे खुशी। कभी ना कभी किसी ना किसी से आपने सुना होगा कि खुश रहने के लिए केवल पैसा, अच्छे रिश्ते, नाम हो जाना ही काफी नहीं है। अब अगर ये काफी नहीं है तो फिर क्या काफी है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हम लोग ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा आध्यात्मिक होती है। उसे भौतिक चीजों में ज्यादा खुशी नहीं मिलती। इसलिए अंदर से खुश होना चाहते हैं, अंदर से खुद को संतुष्ट रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ना होगा। और उसकी शुरुआत हम नाम जप से कर सकते हैं, या फिर हम हरि कथा सुनने से कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको अंदर से खुशी मिलने लगेगी। मैं हूँ आरजी खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: हेलो, वेलकम बैक टू द शो। मैं हूँ आरजे खुशी। सुबह सुबह मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है कपड़े ढूंढने में कि मुझे आज क्या पहनकर जाना है, क्योंकि देखो लड़कों के लिए तो बहुत आसान है, एक जीन्स हो गई, एक पैंट हो गई, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई और जैकेट हो गई। लेकिन लड़कियों के इतने सारे कपड़े होते हैं और हर सीजन में एक नया फैशन। बाकी सभी लड़कियों को बताना चाहूंगी कि इस सीजन में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है शर्ट्स। अगर आपके पास में शर्ट है तो प्लीज पहनना शुरू कर दे, साथ में उसे पेयर करें वी नेक स्वेटर्स के साथ में। लॉन्ग ओवरकोट है तो बहुत अच्छी बात है, और हुडी तो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है। जीन्स के बजाय हम लोग जॉगर्स भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जो आपके फैशन गेम को थोड़ा सा अप कर देंगी। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: पिछले कुछ सालों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि कपड़े ना बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कि आज हम लोगों ने बात की है फैशन की, तो लड़कियों को इन सर्दियों में कैसे अपना फैशन गेम अप करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ भी खरीदना चाहते हैं जो महिलाएं भी यूज कर पाए और पुरुष भी यूज कर पाए, तो एक ऐसी चीज है जो हम खरीद सकते हैं। खादी के जितने भी कोट होते हैं ना, वो कोई भी पहन सकता है। वो साड़ी पे भी अच्छे लगते हैं तो वो पैंट पे भी अच्छे लगते हैं। वो लेडीज सूट्स के साथ में भी पहन सकती है तो पुरुष अपने कुर्ते पजामे के साथ में भी पहन सकते हैं। तो अगली बार कोई खादी वाली शॉप आप देखें या ऑनलाइन शॉप करें तो खादी का एक कोट जरूर ले लीजिएगा। घर में सब जने पहन पाएंगे उसको। मिलूंगी कल आपको इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, दोपहर का एक बज चुका है और 1 बजे आप सभी को पता रहता है रेडियो डीएस पर कार्यक्रम आरंभ होता है नए तराने। रेडियो में हम आपको सुनवाते हैं कुछ चुटकुले, कुछ मस्ती भरी ज्ञानवर्धक बातें और साथ साथ ही नए गाने। तो इस कार्यक्रम का करते हैं आगाज और रेडियो सेट के करीब बैठकर और आनंद लीजिए इस कार्यक्रम का।

0: बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। पीएस प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर।

पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? पप्पू, कुछ आ ही नहीं रहा। टीचर, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू, हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर, क्या? पप्पू, रोना।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। बचपन
5: आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पर भेज रहे हो। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। टीचर 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट आम। टीचर शाबाश। स्टूडेंट अमरूद। टीचर गुड। स्टूडेंट सेब। टीचर वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। स्टूडेंट 1 दर्जन केले।

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेड दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने। डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

दोस्तों छात्रों की अच्छी आदतों में शैक्षणिक उत्कृष्टता, कल्याण एवं सकारात्मक चरित्र विकास शामिल है। इसमें प्रभावी अध्ययन, तकनीकी समय प्रबंधन, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना और लगातार पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल होना, इसके अतिरिक्त कृतज्ञता का अभ्यास करना और छात्र को दयालु होना और विकास की मानसिकता और समग्र एकाग्र रखना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि प्रभावी अध्ययनरत तरीके नवीन तकनीकियों से आते हैं। स्वयं परीक्षण और सारीकरण और प्रश्न पूछने जैसी सक्रिय लक्षण विद्या ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ाती है। शिक्षण राजनीतिकियों को संलग्न करने से और अच्छे टीचरों से पूछने पर हमारे डाउट्स क्लियर करने पर ही समझ में आती है। दोस्तों विद्यार्थी के लिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। कार्यों को योजना बनाकर करना चाहिए और योजना को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यथार्थ लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है। तालमेल न करें कभी भी और कार्य को पूरा करने की हैबिट्स बनाएं। समय सीमा भी जरूर बनाएं। सुबह से लेकर सोने तक की दिनचर्या का पूर्ण ख्याल रखें। दोस्तों अध्ययन के दौरान ब्रेक लेना भी जरूरी है। अध्ययन सत्र के दौरान नियमित ब्रेक लेने से हमारी मानसिकता संतुलन और बौद्धिक विकास बढ़ता है। थकान से बचे जा सकते हैं और अच्छे खान पान का हमें सेवन करना चाहिए।

0: पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर, आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, यहाँ छुट्टियाँ कब से शुरू होंगी? टीचर, मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए, मगर उसे सिर्फ 200 रुपए की जरूरत थी, तो बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा? स्टूडेंट, एक भी नहीं सर। टीचर, क्या तुम इतना गणित भी नहीं जानते? स्टूडेंट, अरे गणित तो जानता हूँ सर, पर आप मेरे कमीने दोस्तों को नहीं जानते। अध्यापक, चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। विद्यार्थी, नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक, शाबाश, और दूसरा कदम किसने रखा था? विद्यार्थी, अरे दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ा तो था नहीं। लॉजिकली थिंकिंग।
1: दोस्तों, इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

दोस्तों बातचीत करते हैं हम गर्मियों में छोटे बालकों की देखभाल कैसे करें। दोस्तों आप सभी जानते हैं हम गर्मी का एक ऐसा सीजन होता है जिसकी सावधानियां बरतना हम तीनों वर्ग के लोगों को होती है, बाल अवस्था या यौवन अवस्था या वृद्ध अवस्था। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गर्मियों में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में बालों को नरिक्स रखना चाहिए, खुले हुए रखना चाहिए और इसे मजबूत बांध के रखना नहीं चाहिए, इन्हें भरपूर पोषण मिलता है। और दोस्तों देखो गर्मियों में खाने पर विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है, हमें तरल पदार्थ अधिक लेना है और तरल पदार्थ में छाछ, दही और फलों के जूस और नींबू पानी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पानी को अधिक पिए। दोस्तों गर्मी में कपड़ों का विशेष महत्व होता है पहनने का, हमें हल्के सूती कपड़े अधिक समय तक पहनने चाहिए और कोशिश ये करें कि हम सूती कपड़ों का यूज करें, क्योंकि दोस्तों जब पसीने हमारे शरीर में आते हैं तो उन पसीनों को ये सोख लेता है और सूती कपड़े हमेशा ठंडे रहते हैं। कलर का भी हमको मैचिंग रखना है, गर्मी के समय में हम सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि दोस्तों जितना हम डार्क कलर पहनेंगे तो वो धूप सोखता है, तो धूप ऑब्जर्व करने के लिए वो हमें तेज़ गर्मी देता है जिससे हमें और हमारी बॉडी को अधिक गर्मी लगती है जिससे पसीने अधिक आते हैं। दोस्तों छोटे बच्चों को हम सुबह 10 बजे बाद घर से ना निकलने दें और छोटे बच्चों की हैबिट बनाएं कि हम अधिक से अधिक उन्हें पानी पिलाने की राय दें, अधिक से अधिक पानी पिलाएं और कम से कम खाना दें। दोस्तों गर्मी के समय में नारियल पानी और फलों का जूस बच्चों को ज़्यादा दें। कोशिश करें कि हम हमारे देसी परम्परागत खान पान जैसे लपटा और उसके साथ साथ राबड़ी, इनको बच्चों को खिलाएं। दोस्तों सुबह सुबह अगर छाछ राबड़ी का यदि हम बच्चों को कलेवा देते हैं यानी नाश्ता देते हैं तो उनके भूख का खुलना अधिक हो जाता है और साथ साथ भूख के साथ साथ उनकी पाचन जो क्रिया शक्ति होती है वो तीव्र गति से बढ़ती है, खाना भी अधिक खाएंगे और स्वास्थ्य उनका बरकरार रहेगा। दोस्तों बातचीत तो बहुत सारी हो चुकी है और चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, लौटते हैं सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने। डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: शराब पीने से रंग गोरा होता है? डॉक्टर, हाँ होता है। पप्पू, यार आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर, क्यों क्या हुआ? पप्पू, अगर दूध पीने से रंग गोरा होता तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है?
1: नो नो नो नो।
0: डॉक्टर के पास पहुंचा गप्पू। डॉक्टर ने गप्पू की टेस्ट रिपोर्ट देख कहा, आपकी एक किडनी फेल हो गई है। गप्पू रोने लगा और कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला, ये तो बता दीजिए डॉक्टर साहब कि मेरी किडनी आखिर कितने नंबर से फेल हुई है।

0: सरदार स्टेशन जाने का कितना लोगे? रिक्शा वाला 50 रुपया। सरदार 20 ले लो। रिक्शा वाला 20 में कौन लेके जाएगा? सरदार तुम पीछे बैठो, हम लेके जाएगा। बैंक मैनेजर, ये कैसे हस्ताक्षर है? पप्पू, यह हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब हस्ताक्षर, नाम क्या है उनका? पप्पू जलेबी बाई।
1: नो नो नो नो।
0: एक बार एक

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने। डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका

बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: अब बता कहां से शुरू करना है?
1: हर उस जगह जहां वो पिछले साल मिली।
0: यार एक तो तू पागल है, ऊपर से मैं पागल जो दोबारा यहाँ आ गए। तू पक्का है? तुझे सच्ची लगता है वो आई होगी यहाँ?
1: इस तारीख का कुछ तो मतलब होगा। चल

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

0: आदि है।
1: बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

दोस्तों इस वक्त आप टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, ये तो आपने सुना ही होगा। मैं हूँ आरजी खुशी, लेकिन इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल लोग अपनी जो बड़ी खुशियां हैं उनको मनाने से भी कतराते हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में हर दिन बहुत खास होता है, हर दिन कोई ना कोई खास तिथि होती है, और अगर हम क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं हर दिन एक त्योहार होता है जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए माना हर दिन तो हम लोग नहीं मना सकते, लेकिन महीने में एक या दो दिन तो ऐसे जरूर आते हैं जब हम सब लोग मिलकर साथ बैठकर किसी एक त्योहार को मना सकते हैं। इन छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मनाना शुरू करेंगे ना, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड होगी। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी लाइफ में बहाना होना चाहिए लोगों को खिलाने का, उन्हें अपने घर बुलाने का और बहुत सारे मजे करने का। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की बातें ना हम लोगों ने कोरोना काल में सीखी है। मैं हूँ आरजे खुशी। कोई लोग बोलने लगे कि हल्दी का दूध पियो, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगातार दवाई लेते रहो, कुछ लोगों ने कहा लगातार आप च्यवनप्राश खाते रहो, तो कुछ लोग बोले कि आंवला रोज खाते रहो। लेकिन आप जानते हो कि एकदम से कुछ खा लेने से आपकी बॉडी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेली कुछ अच्छा खाते रहोगे ना, तब बात है। अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि इतनी जो कलरफुल सब्जियां आपको दिखती है ना, इतने रंग बिरंगे फ्रूट्स आपको दिखते हैं, उनको खरीद कर खाना शुरू कर दीजिए। जितने रंग की सब्जियां आप खरीदेंगे, उतना प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे। और अगर आप रेगुलर वे में ये करेंगे तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि आपको बाहर से किसी चीज को कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई तो किसी भी सीजन में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हमारा दिमाग ना कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है अगर हम जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत वीडियो देखने की आदत उसको पड़ जाती है और लगातार गलत वीडियो देखता रहता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड की वीडियो देखने शुरू करते हैं और एक के बाद एक वही वीडियो देखते रहेंगे, वही वीडियो उनके टाइमलाइन में आ जाएंगे। तो जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपने फोन में देख रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे दिमाग पे। एक तो अगर हमने एक ही तरह का कंटेंट देखना शुरू कर दिया तो वो ही हमारी प्रोफाइल पे बार बार आएगा। इसलिए अगर कोई फालतू का कंटेंट आपकी प्रोफाइल में आए ना, उसे देखिए मत, उसे स्किप कर दीजिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी हमें उस यंत्र से मिल पाए जिसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा हम लोग इसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो क्यों ना इसे ही पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए। सोच कर देखिए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

अच्छा एक बात बताओ कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब आंदोलन? अरे नहीं, ये वाला नहीं, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और मूवमेंट से मेरा मतलब था आंदोलन नहीं, हरकत। हरकतें हम जब बॉडी मूवमेंट करता है, बॉडी हरकतें करती है, वो हरकत। क्यों बता रहा? क्योंकि एक फैक्ट के मुताबिक हर सेकंड मैं और आप, हम जैसे नॉर्मल इंसान, हर सेकंड में हमारी जो आंखें होती है वो 50 मूवमेंट्स करती है। यानी हर सेकंड हमारी आंखें 50 अलग अलग प्रकार के हरकतें करती है। लेकिन जब यही रिसर्च भैया गंगापुर सिटी के कुछ लड़कों पे हमने किया तो पाया क्या कि उनकी आंखें 500 तक भैया मूवमेंट करती है हर सेकंड में, जब वो अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के सामने होते। मुझे नहीं पता क्यों, पर फिलहाल आप बैक टू बैक अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: अच्छा अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे ना ट्यूलिप का फूल दे दो। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और हिंदुस्तान में तो भैया अगर आप पैसे के बदले ट्यूलिप का फूल दोगे तो आपको फिर डिशुक। लेकिन अगर आप हॉलैंड में पैदा हुए होते लेकिन साल 2024 नहीं साल 1634 में अगर हॉलैंड में पैदा होते तो शायद ये काम करते, क्योंकि उस साल हॉलैंड में वहां के लोगों ने ट्यूलिप के फूल को नेशनल करेंसी बना लिया। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे।

अगर आप इंसान हो और ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो मुझे नहीं पता उससे कोई फायदा हो भी रहा या नहीं, लेकिन अगर आप गाय हो यानी कि मो काओ तो फिर तो फायदा है। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। आज का शो यही तक था, लेकिन जाने से पहले काओ यानी कि गाय अगर ज्यादा म्यूजिक वो सुनते हैं तो फिर वो ज्यादा दूध देती है। अब इस इंफॉर्मेशन को अपने ग्वाले तक पहुंचाओ, क्योंकि वो हर रोज आपको दूध में पानी मिला के दे रहे। बोलो भैया प्लीज पानी मिलाना बंद करो और अपने गाय को म्यूजिक सुनाओ। फिलहाल आप म्यूजिक सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी।

ऐसी छाप छोड़ी कि जमाने बदल गए, लेकिन उनका जादू आज भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही एक संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन को लोग आज भी एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपनी आवाज और संगीत से खूब नाम कमाया। एसडी बर्मन एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन असल जिंदगी में बेहद सरल जीवन जीते थे। एसडी बर्मन साहब की मां का नाम निर्मला देवी था, जो मणिपुर की राजकुमारी थी, जबकि उनके पिता एक महाराजा के बेटे थे। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीष आपके साथ। एसडी बर्मन साहब ने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। संगीत की दुनिया में उन्होंने सितार वादन के साथ कदम रखा। कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद एसडी बर्मन ने 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों में तथा फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: SD बर्मन के किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर थे। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले SD बर्मन को लोग कंजूस भी कहा करते थे। उनसे जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा है चप्पल का। दरअसल जब भी SD बर्मन मंदिर जाया करते थे तो उन्हें अपनी चप्पल खोने का डर लगा रहता था, और इससे बचने के लिए वो एक तरकीब निकाला करते थे। SD बर्मन जब भी मंदिर जाते थे तो वो कभी भी दोनों चप्पल एक साथ नहीं उतारते थे। इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजकल शहर में चप्पल चोरी की वारदात बढ़ गई है। तब उनके दोस्त ने पूछा कि अगर चोर ने दोनों चप्पल खोज ली तो क्या होगा। ऐसे में उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, यदि इतनी चप्पलों में से दोनों चप्पल खोज निकालता है तो सच में वो इसका हकदार है। SD बर्मन की और बातें आपके लिए 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। एसडी बर्मन ने फिल्म तलाश, बंदनी, अमर प्रेम आदि फिल्मों में भी गानों को अपनी आवाज दी। उनकी प्रमुख फिल्में मिली, अभियान, ज्वेल थीफ, गाइड, प्यासा, बंदनी, सुजाता और टैक्सी ड्राइवर थी। 1969 की फिल्म आराधना में भी एसडी बर्मन का ही संगीत था। इस फिल्म से एक और सुपरस्टार राजेश खन्ना का उदय हुआ। वहीं गायक किशोर कुमार के करियर को भी नई ऊंचाई मिली। सफरनामे में आज इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: भगवत गीता की एक बात मुझे बार बार याद आती है। मैं हूँ आरजे खुशी और हर दिन की तरह आज की भी शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ। अब सोचे तो पानी में कोई स्वाद होता ही नहीं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक लाकर दे, आइसक्रीम लाकर दे, पिज्जा बर्गर लाकर दे, तो क्या आपका मन भरेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको उस वक्त केवल पानी की जरूरत होगी। जो काम पानी कर सकता है वो दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी तरीके से हार जाएं, आपको कहीं से संतुष्टि ना मिले, तो केवल और केवल भगवान का नाम आपका सहारा बनता है। तो उस नाम को लेने से कभी ना चूके और जब मौका लगे तब उस नाम को जरूर ले। हरे कृष्ण राम, जो आपको प्रिय हो। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: लोग कहते हैं कि एफडी करने में ज्यादा फायदा नहीं रहा है। मैं हूँ आरजे खुशी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी एफडी करना कोई बुरी बात नहीं है। मान लीजिए कि आपके साथ में 1 लाख रुपए हैं। अगर आप 1 लाख की एफडी करेंगे तो हाँ नुकसान है, लेकिन अगर 1 लाख को आप 10-10-10-10 हजार में बांट दें और फिर अलग अलग एफडी करें तो सोचिए कितना फायदा है ना। तो एफडी इतनी भी खराब नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बस उसका सही इस्तेमाल करना हमें आए। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: घर तो हम साफ करते ही रहते, खुद भी नहा लेते हैं, लेकिन फिर भी पता है कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया हम तक पहुंच ही जाते हैं। मैं हूं आरजे खुशी। पता है क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को हम कभी साफ नहीं करते, जो ईयरफोन हम अपने कान में लगाते हैं उनको कभी साफ नहीं करते, और इन्हें साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उन सबकी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी घर की और हमारी खुद की सफाई, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इन्हीं चीजों का करते हैं। जैसे गेट खोलते वक्त जो डोर नॉब है उसका साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई चीज है जिसको हम बार बार हाथ लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसका भी साफ होना बार बार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज बाकी सफाई के साथ साथ क्यों ना इन चीजों की भी सफाई की जाए। मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

हर चीज के पीछे एक ही रीजन, क्या? फोन। ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो डीएसटी 9.6। चाहे कमर में दर्द हो, चाहे चलते चलते आपके पैरों में मोच आ जाए, चाहे आप साइकिल से गिर जाओ, चाहे आपसे जिम छूट जाए, चाहे आपका बस छूट जाए, कुछ भी हो, मम्मी एक ही रीजन देती है कि ये तो फोन चलाने की वजह से ही हुआ है। और ऐसी रीजनिंग आज के जमाने से नहीं है, हजारों साल पहले जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, तब चाहे इंसान को कुछ भी जहर लग जाए, चाहे वो सांप ने काटा हो, चाहे वो खाने में मिल जाए, उस जमाने में लोग सिर्फ एक ही चीज यूज करते थे एज ए जहर का इलाज, और वो था नींबू यानी लेमन। पर फिलहाल आपके कानों का इलाज गाने। तभी मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ बैक टू बैक अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कई बार इतिहास की चीजें जानने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार क्यों जाना मैंने ये, ट्यून इन कर रखा अपनी 89.6 रेडियो डीएस। और एक जमाने में लोग केचप यानी टमेटो सॉस केचप को बेचते थे एज ए मेडिसिन, दवाई के रूप में बिकता था केचप। हाय हाय हाय हाय, इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपके कानों से खून निकल रहा हो, तो फिर रुक जाओ, मैं आपके कानों का इलाज करता हूँ। बैक टू बैक कुछ अमेजिंग गाने आपके लिए प्ले करने वाला हूँ 89.6 रेडियो डीएस पे।
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन अगर कोई भी है तो फिर ये खबर आपके लिए। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और टिल डेट 2024 चालू हो चुका है। और कौन सी खबर है भैया? हमारे बगल में, पड़ोस में जो यूएस है, यूएस का प्रेसिडेंट आज तक जो भी बना है वो कभी भी अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे नहीं थे, यानी किसी का बड़ा भाई था, किसी का छोटा, किसी की बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन। अगर आप यूएस जाके वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहे हो तो फिर आज का शो मेरा यही तक था। फिलहाल टाइम टू गो बैक टू बैक अमेजिंग कुछ गाने आपके लिए प्ले करके जा रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया के साथ उनका अफेयर था। यह प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। फिर अलगाव भी हुआ और भी कई मशहूर अभिनेत्रियों से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आई लेकिन देवानंद साहब अकेले ही रहे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। देवानंद साहब को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छाट कर अलग से रख देता था और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरुदासपुर आ रहे हैं। तब वो वहाँ गए भी थे, वो उन्हें देखना चाहते थे लेकिन दूर से ही देख रहे थे। तो ये उनका फिल्मों के प्रति आकर्षण था और उनका प्रेम था। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। देवानंद जी का एक किस्सा है कि खुद का पेट पालने के लिए उन्होंने अपना स्टैंप कलेक्शन भी बेचा था। जेब में 30 रुपए लिए आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद साहब सपनों की नगरी मुंबई में आए। भरी दोपहरी में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने भी जाया करते थे। समय गुजर रहा था लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए थे। जब उन्हें भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो 1 भी रुपया नहीं मिला। भूख और काम की इसी लालसा ने उन्हें स्टैम्प कलेक्शन के एल्बम को बेचने को मजबूर कर दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिन गुजारे। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे सफरनामे में 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

आपने एक बात तो अपने जीवन में जरूर सुनी होगी कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको भगवद गीता में मिलेगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये बात बिल्कुल सही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान अपनी इंद्रियों के कंट्रोल में है ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमेशा करेगा, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता। देख लीजिए, अपने आसपास आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो एकदम से खुश होकर बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं, या फिर कोई चीज बहुत खाने की पसंद है तो खाते ही रहेंगे, उसके बाद में पेट में दिक्कत हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने गुस्से को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते और कहीं भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देंगे। अब ये सब होता है, टेम्पररी है, बाद में वो सॉरी बोलते फिरेंगे, लेकिन एक बार के लिए तो उनसे गड़बड़ी हो गई। और ये गड़बड़ी तभी होती है जब हम अपने इमोशंस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो इस नई सुबह की शुरुआत इसी सोच के साथ कि हर बात अपनी इंद्रियों की हमें माननी जरूरी नहीं है। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। 89.6 पे

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: लोगों की सर्दियों को लेकर ना बहुत गलत धारणाएं हैं। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे माना जाता है कि सर्दियों में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अंदर से

को ठंडा कर देता है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप सर्दियों में भी दही खा सकते हैं, बस शर्त यह है कि एकदम फ्रिज से निकाल कर आपको नहीं खाना है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए जो आपके कमरे का टेम्परेचर है, और उसमें आप हल्की सी काली मिर्च डाल दीजिए, यानी कि वो चीज जिसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है अगर वो आप दही में मिक्स करेंगे तो आपको कभी भी ठंड की, जुकाम की या गले खराब की प्रॉब्लम नहीं होगी सर्दियों में दही खाने से। तो जिन भी लोगों को दही पसंद है लेकिन सर्दियों की वजह से नहीं खा पा रहे वो दही खाना शुरू कर दे। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी ही देर में। 89.6 पे रेडियो DS।

देखो किसी भी एग्जाम में ना आप एक बार पढ़ लो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर आपने सही से रिवाइज किया तो आपको वो टॉपिक एकदम अच्छे से याद हो जाता है। मैं हूँ आरजे खुशी। ऐसा ही कुछ लाइफ में भी है। देखो हम लोग ने एग्जाम क्लियर करने का फंडा तो समझ चुके हैं, लेकिन लाइफ को कैसे अच्छे से जीना है ये शायद अभी भी हमको नहीं आया है। इसलिए हमें ये तो पता है कि अच्छी बातें क्या होती है, लेकिन अगर हम उन्हें बार बार बोलकर दोहराएंगे नहीं, किसी को सिखाएंगे नहीं, खुद को समझाएंगे नहीं, तो बीच बीच में हम भी भूलते जाएंगे। बात समझना अलग है और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाना अलग है। इसलिए रोज सुबह मैं इसी सोच के साथ आती हूँ कि खुद में भी बदलाव करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि बेहतर जीवन के लिए हम अपने में क्या बदलाव कर सकते हैं। बाकी मिलूंगी आपको कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।